कारीगर कारीगरा कारखाने विच जाए मिलंदे अपने अपने वर्ण विच चार वर्ण कुल धर्म करन दे अपने अपने साहिब चाकर जाए जुहार जुड़न दे अपने अपने खेत विच बियो सदा किरसान बिजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे अमली रचन अमलियां।

दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाये, हर रस पीवो भाई, हर रस पीवो भाई, नाम जपो नाम।

वेदन गुर बिरहों लगावे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल।

काम क्रोध अर लोभ मोह वास करै सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नाव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवै। सुख हटा

0: नमो सर्वमान्य समस्त निधाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व
0: भौणे नाथे न संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मन माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान
0: नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बद बदे
1: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बभूते
0: कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे
1: नमो जोग जुगे सुरंग परम सिद्धे नमो राज
0: परम नमो शास्त्र परम ज्ञाता नमो लोक
1: माता
0: नारायण कुरु कर्म नमो प्रेता प्रे देव धर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो
0: नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोग नमास्तु शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो
0: सदा सचिदानंद सर्वं परनाशिनु पिरूपे समस्तल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृत्त कर्ता अदो उर्धर धंगा गंग ओगहर्ता
0: परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदास दाता दयालं
1: असिद्धिय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी

0: सदा
1: सर्व सलाम दैवल कामन बासूप गादनूप
0: अवगाद रूपे अनाद स्वरूप नंगी अनामेत पंगीत
1: बाध्य गंजे गादे शुभम सर्भाग्य सर्वानुरागी
0: निर्भुक्त स्वरूप है
1: प्रभा सदा वंश सदा भक्त स्वरूप प्रजोक्त अनुप
0: है सदा है।

0: सर्वंगता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग
0: सर्वं कर्मंग सर्वं धर्मंग सर्वं जोगता सर्वं मुक्ता
1: सावल शांत व प्रसार
0: नव नरक नासिस देवं प्रकाशयन अंगंग स्वरूपे पंगंग विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: नंदी न मित्र पंगितर काम निरपंगी स्वरूपे सर्वांगी अनुपे
1: न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न
0: साधु श्री काम तोमी कसदैव प्रभा है जय है जय है
1: भगवती
0: शांत प्रसाद जहाजूर के हाजिर हजूर है मेरे सलाम है समस्त कलाम है
1: साहिब दिमाग है कि उसन जराग है कि कमल करीम है कि राज करीम
0: है रोजी जानदा है कि राज करेंदा करी मुल्क माल है कृष्ण जमाल है
1: गरी मुल्क राज है गरी बोल निवाज है हरी फुल शिकन है हिरास और फिकन है
0: लंकुं बरनाश है समस्त निवास है गंजन गनी मर जाए करीम है
1: समस्त जुबा है के साहेब किरा है के नरकंग प्रणास है बेस्तोल निवास है
0: सर्व भगवान ने मेरे सर्वान तमाम तुम्ही जय समस्तल जी जय
1: परम परमीश है समस्तल दीस है देसोल लेख है हमेशोल बेख है
0: नौ जवा मी कोले मैं करी मुल कमाल है के जरूरत जमाल है
1: के आज लंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बबूत है
0: मितो बस है के आत्म प्रभ है के चलंग नंग मितो अभंग है
1: मदपार शांत व प्रसाद
0: मन मन प्रणा गुण गान मुदामार पर गांज हर नर पर पांज
1: अनगन पर नाम मन मन सलाम हर नर अखंड वर नर
0: मन भव नाश मन मन प्रगा गुण गान प्रणाम जल थल मदाम
1: अंशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उधार
0: जल थल मान दस विश पण जल थल मान दस विश बेअंत
1: अनुभव नास त्रेता तो रास आजान बाहो एक सदा हो
0: ओंकार आदि कथनी नाद खल खंड ख्याल गुरु बर अकाल
1: कर कर प्रणाम जित चर नाम अंशिज गात
0: खल खंडन है मह मंडन है
1: जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है
0: त्रण है जाके करण है मन मान्य है जग जान्य है
1: सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है
0: करुणाकर है शंकर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
1: ब्रह्मंड से है खल खंड से है परते पर है करुणा कर है
0: तपा तपा कृता कृता अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी धृत है
0: ईश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है
1: अजपा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है
0: शंकर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है
1: भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
0: कृत सर्वाकृता है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जस है पुजंग पयात शत
0: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो राम शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग बबूते
0: रूपे लंकर लंके नमो आशासे नमो बंग बंके
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले

0: जिते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचारै निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीला नाद संभ ताको कर पाहन अनुमानत महामूर कछ भेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव
0: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती
1: न जाए पसारा के सजा प्रथम संसार

0: अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबारिया सिख संगरो तव शरणी परे तिन के दुष्ट दुख तो है मरे
1: परे तिहारे तिन के तुम संकट सब डारे
0: जो कल को एक बार

द्रौपदी लाज रखी अर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राख्या गनका पड़त पुरै ते काज। श्री सतगुरु सो

मस्त काट तरी तसे आगे तन मन आगे देओ। नानक संत मिले सच पाईऐ सहज पाए जिस ले क्या पवाई है सच सूचा होई सच शब्द बिन मुक्त।

हे मन चल तो सच कर बैसे, नानक नाम उदारो, आपे मेल मिलाए करता लागे सच प्यारो। हाटी बाटी रह निराले, रूप बिरक उद्याने, कंद मूल आहारो खाइए, औदू बोला ज्ञाने, तीर्थ नाइए सुख पल पाइए।

अराहन कवन गुफा जित रह अवाहन इत्युत किसको जान समावै कौन ध्यान मन मन समावै हो मैं विचों गोवै दूजा मिटै कू वै जा करड़ा मन मुख गवार शब्द कमाई है खाइए सार अंतर बार एको जान नानक अगण मरै सतगुर कै भाण है सच पै राता गर्भ निवार एको जाता शब्द विचार है शब्द वसै सच अंतर ही आ तन मन सीता रंग रंगीया काम क्रोध बिकक निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हिवै कर छाया कवन मुख सूरी तपे तपाया कवन मुख काल जोत नित रह कवन बुध गुरमुख पत रह।

क्या चल रहा है तिस नाल गुरु प्रसादी अरध्याई अंतर रखी और धार नान कर बैठे सौ पाई है जा कृपा की करतार माला तीजा तुंदा ताव दिन गया रैन गवाई सोए कूड़ बोल बिक खाया।

मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरे अर्जन पिखो नैन सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों।

कहने वाले तेरे रह समाए। वड्डे मेरे साहिबा गह गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा खेता के उड़चीरा रहा। सब सूरती मिल सूरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाए। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाए, कह न जाई तेरी तिल वड्याए। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा क्यों वड़े आईया। तुदिन सिद्धिक ने न पाईया, करम लैने ठाकर आई। आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडार। जिस तू

हर हर नाम मिले त्रिपतासे मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीव त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संग

तीर्थ एका मुक्ति का तित पट मत विकास उत्मति सालाना सतनाम गुणदास बाबा होर मत होर होर जिथे जिस वैर कमाई कूड़े कूड़ा जो रहा उत पूज मिले पूज लगे पीरा पीरा किए समले संसार ना सदा अपना हो समार सद समार जपत लेखे ना पवे सब पूज कुवार जिनको सतगुरु था पिया तिन बे न सके कोय ऊना अंदर नाम दान है नाम प्रगट होय ना पूजिए ना खंडिए खंड सदा सा सोय खेउ खेर लाई जान जी ताजू के हा होए जनिया सब से अण पा उठी चलिया रोए

मैं मन तन बिरवत अगला क्यों प्रीतम बिले हरि आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखै दुख जाए जाए पूछा तो सजना प्रभ के तब मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना वरना कोए हम मूर्ख मुख सना कर कृपा मिले हर सोए रहाओ सतगुर दाता नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुरा प्रभ बुझिया गुरुदेव बड़ा वरना कोए हम गुर सना ही टह पवा कर दया मिले प्रभ सोए मन हटके ने ना पाया कर पाप सके सा कोई सह स्याण वकार।

ਜਨ ਵਿਚਰੈ ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਹਿ ਪਾਲ ਮਰੂਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਏ ਵਿਆਪੈ ਰਸ ਮਿਸ ਬੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਚਾਖੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜ ਮੈਂ ਛੋੜ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਅਰਾਧੇ ਆ ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ ਤੋ ਆਨ ਸਖਤ ਗਲ ਬਾਂਧੇ ਆ ਤਰਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਾਤ੍ਰੈ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਸਰਬ ਸਰਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਅਨੁਪਤ ਕਾਮ ਮਹਾਂ ਵਿਭੂਲੈ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੁਤ ਸੰਪਦ ਦੇਖ ਇਹ ਮਨ ਗਰਬਿਆ ਰਾਮ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਖੋਇਆ ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੇ ਤਾਉ ਭਗਮੁਖ ਜਨਮ ਵਿਗੋਇਆ ਪੁੰਡਰ ਕੇ ਇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲੋਚਨ ਸਮੈ ਬੁੱਧ ਮਨ ਨਾਠੀ ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵ ਸਮਾਧਾਣੀ ਤਾਤੇ ਵਿਖਾ ਭਈ ਮਤ ਪਾਵਸ ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਕੁਲਾਣਾ ਕੁਮਲਾਣਾ ਅਵਗਤ ਬਾਣ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਤਉ ਪਾਛਾ ਪਛਤਾਣਾ ਨਿਕੁਟੀ ਦੇਖ ਧੁਨ ਉਪਜਾ ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਬੂਝਾ ਲਾਲਚ ਕਰਿਆ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਰਨ ਲੋਚਨ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੈ ਥਾਕਾ ਤੇਜ ਉੱਡਿਆ ਮਨ ਪੰਖੀ ਘਰ ਅੰਗਰ ਨਾ ਸੁਖਾਈ ਬੇਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਰੇ ਭਗਤ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਹੈ ਅਨੰਤਾ ਪਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ਰਹੋ ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਕਛੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀ ਜੈ ਜਨਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰੀਰ ਅਰਾਧਾ ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋ ਰਾਗ ਮਾਜ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿਬ ਹੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮਤ ਚੱਲਾ ਜੀਉ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਖਾ ਚਲਿਆ ਮਨ ਪੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਹਰ ਨਿਚਲ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲਾ ਜੀਉ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲਾ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲਾ ਜੀਉ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਏ ਵਰਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵਟ ਭਾਗੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਾ ਜੀਉ ਹੁਣ ਮੰਤਨ ਖੋਜੀ ਭਲ ਭਲਾਈ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦੇ ਆਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਾ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਵਿਗਸਾ ਜੀਉ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵਾ ਮੇਰੇ ਮੰਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰੋਂ ਲਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਸਾ ਜੀਉ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਆਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਆਂ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗ ਭੋਜਲ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਜੀਓ ਆਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੇਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਮੈਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾਂ ਮਿਲ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਸੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਨਰ ਹਰੀਆ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਮੈਂ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਰੀਆ ਜੀਓ ਹਮ ਚਾਤੁਰਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੂੰਦ ਮੁਖ ਪਾਈ ਹਰ ਜਲ ਨਿਧ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਬਿਨ ਮਰੀਆ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਭੀਜੈ ਜੀਓ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜੀਓ ਵੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਨ ਪਰਮ ਝੂਟਾਂ ਖਾਵੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਭੀਜੈ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤਾ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਟੁਲ ਟੁਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮੈਂ ਗਲ ਮਿਲਾਈਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮਨ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਓ ਵੁੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਰਸ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਾਗਹੀਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮਲ ਹਮੈਂ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਨਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਦਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨਾਮ ਸਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਰਸ ਕੀਚੈ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧਨ ਹਰ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬਾਂ ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਜਨ ਹਰ ਕੀ ਬਾਤਾ ਪਾਮ ਬਲੋਵਾਂ ਮਲਮਲ ਧੋਵਾਂ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਪੀਚੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਵੜ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਚੈ ਜੀਓ ਹਰ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਪੁਰਖ ਮਿਲਾਈਆ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰੀਚੈ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਸੇ ਤਿਸ ਕਹਿ ਹੋ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਲੱਦਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜੀਓ
मिल सत संगत लद्दा हर सजन हो सतगुरु विटो घुमाइया जियो। जा जा देखा तह तह स्वामी तू घट घट रवे अंतर जामी गुर पूरा हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विटो सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका सब एका जोत सवाइया सब एका जोत वरता भिन्न भिन्न रली किसी की रलाइया गुर प्रसाद की एक नदरी आया हो सतगुरु विटो बताया जियो। जब नानक बोला अमृत बाणी गुरसिखा का मन प्यारी भाणी उपदेश करे गुरु सतगुरु पूरा गुरु सतगुरु परोपकारी आ जियो। सत चौपदे महले चौथे के माज महला पांचवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई बिलप करे चातर की न्याई त्रिखन अवतरा शांत नाव बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों कोली जियो घोल कुमाई गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। रहा तेरा मुख सुहावा जियो साहिब तुम बाणी चिर हुआ देखे सारंग पाणी धन सुदे जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हों कोली हों कोल कुमाई गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो। रहा घड़ी न मिले तेता कलज को होता हूं कद मिलिया पर तुत भगवानता मोह रहण ना विहावा नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। हों कोली जियो घोल कुमाई ते सचे गुर दरबारे जियो। रहा भाग होआ गुर संत मिलाया प्रभु विनाशी घर में पाया सेव करी पल चसा ना विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों कोली जियो घोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। रहाओ राग माज महला पंजवा सरुत सावी जे तू संभाली सो कम सोहेला जो तेरी घाली सुरेदा सोहेला जितरे दा तू बुठा सबना के दा तारा जियो। तू सांझा साहब बाप हमारा नौ ने तेरा खुट भंडारा जिस तू दे सुतरे तो गावा सोई भगत महाराज जियो। सबको आसा तेरी बैठा कटकड़े अंतर तू है बुठा सबे सांझी वाल सदायण तू किस ना दसे महाराज जियो। तू आपे गुरमुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाई नांग दा तेरा बुलारा सब तेरा खेल दसारा जियो। आज महला पंजवा अनहद वाजा साहे सोहेला शब्द आनंद करे सदकेला साज गुफा मैं ताड़ी लाई आसन ऊच सवारिया जियो। फिर कर अपने ग्रह में आया जो लोड़ींदा सोई पाया तृप्त गाए रहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राज ने आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा आपे तख्त मैं सच न्याई सब चुकी कूक पुकारिया जियो। यह डिठा मैं तेहो कया तिस रस आया जिन भेद लया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो। माज महला पंजवा जित कर फिर सुहाग बनाया तित कर सिखिए मंगल गाया अंध विनोद तिता कर सोह जो तन कंत शिंगारी जियो। सागुणवंती सावड भागण पुत्रवंती सीरवंत सुहागण रूपवंता सुगण पचखण जो तन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने सब शिंगार बने तिस ज्ञाने साकुलवंती सास भराई जो पिरकै रंग सुवारी जियो। मैं मत इसकी कहना जाए जो परमेड़ लई अंग लाए तिर सुहाग वर अगम गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो। माज महला पंजवा खोए तो खोए दर्शन चाहे पहांत पहांत बन बने वगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो। खट शाहित विचर मोह ज्ञाना पूजा तिलक तीर्थ शनाना निवली करम कासन चौरासी इन मैं शांत न आवे जियो। अनक बरख किए जब तापा गवन किया धरती परमाता एक हृदय शांत न आवे जोगी बौड़ बौड़ उठता आवे जियो। कर कृपा मोह साध मिलाया मंत्र शीतल तिहज पाया प्रभु नाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म परंपर देव आगम गोचर लख भेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो। गुरमुख मसूद निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइया होर कितना भाती जियो। निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजा पैरा गुरमुख हिरदय जाके हर हर सोई भगत काती जियो। अमोघ दर्शन बेअंत पारा वट समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तरिया गत नानक विरली जाती जियो। माज महला पंजवा कया करना दिता लैना गरीबा नाथा तेरा माणा सब कुछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बाल जाई जियो। भाणा उजड़ भाणे राहा भाणे हर गुण गुरमुख गा वाहा भाणे भरम पवे बोजूनी सब कुछ तेरे रजाई जियो। ना को मूर्ख ना को स्याणा वरता सब कुछ तेरा भाणा आगम गोचर बेअंत था तेरी कीमत कहण ना जाई जियो। खाक संतन की दो प्यारे आए प्यार तेरे द्वारे दर्शन पेखत मनिया गावे नानक मिरन सुभाई जियो। माज महला पंजवा दुख तदे जम विसर जावे भुख ब्यापे बहु बितावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवै दीन दयाला जियो। दुख तदे जम विसर जावे भुख ब्यापे बहु बितावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवै दीन दयाला जियो। सतगुर मेड़ा वड समर्था जिये समाली त सब दुख लत्था चिंता रोग गई हों पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो। बारक वांगी हो सब कुछ मंगा दें दे तोड़ ना ही प्रभ रंगा पैरी पैपे बहु मनाई दीन दयाल गोपाला जियो। हम बिलहारी सतगुरु पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हिरदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो। माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊचे था बेअंत स्वामी सिमर सिमर हों जीवा जियो।
दुख पंजन निधान बोले निर्भो निर्वैर था तोले काल मूर्त जूनी संपो मन सिमृत ठंडा थी वाजियो सदा संगी हर रंग गुपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तान गुरमुख अमृत पी वाजियो दुख सुख प्यारे तुत त्याई ए समत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परी वाजियो माज महला पंजमा धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सबल दर्शन नेत्र पेख तरिया धन मूर्त चसे पर कड़िया धन सो ए संजोगा जियो उत्तम करत मन निर्मल हुआ हर मार्ग चल भ्रमण सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कधी तय आप खाणी गुर कया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पहन नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमाशे नाम नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजमा सगल संतन पै वास्ते कमांगू करो बेनती मान ते आगो बार बार जाई लखवरिया देव संतन की धूरा जियो तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम सम्राट सदा सुदाते सब को तुम ही तिवर सावै अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरा भवन पनीता आत्मगढ़ बिखम तेना ही जीता तुम दाते तुम पुरख विधाते तो जेवड़े अवर ना सूरा जियो रेन संत की मेरा मुख लागी द्रमद बिंदी कबोध भागी सच कर बैस रहे गुण गाये नानक मिनसे कूरा जियो माज महला पांजवा विसर राही एवड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सराण ज्यो तो त्याही ए दान मुख करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सब कुछ दिया भलिया जाई अंध बिरोह चो चमाशे तुद भावै सो होना जियो चिस्ता दिता सब कुछ लैना छत्ती अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दी जय जित विसरे नाही सा मत दी जय जे तुद त्याई सा सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजमा सिर सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद भाई सोई जब जो प्रभु जी भावै पाणा पूर गयाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावै जो साहब तेरे मन भावै तू संतन का संत मारे संत सह मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खिलै तुम संग पाला अपने संत तो खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन का मेरा मन कुरबाने जिन तू जाता जो तुद मन भाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर स्नान तृप्त अगाना जियो माज महला पंजमा तू जल निद हमीन तुम्हारे तू जल निद हमीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चातरक तिहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारक पी खीर अगावै ज्यो निरतन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीत ठंडा त्यो हर संग मन पीना जियो ज्यो दिहारा दीप प्रगासा भरता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग जाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजमा अमृत नाम सदा निर्मली आ सुखदाई दुख बिडार हरिया अवर साध चक सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निधान तिसे प्राप्त शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त गाना जिन हर साध पाया सो नायण लाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक भाग ईठा जियो हर एक साथ आया बरसाने बहु तेरे तिसलगमुत भये कंडेरे नाम निधाना गुरु पाइय को नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजमा निद सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गैर गंभीरे ला कोट खुशियां रंग रावै जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेगत भय पुनीता सगलो तारे भाई मीता गम उचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच ते आई जियो जा को खोजा सर्व भाई वडभागी दर्शन को बिरला पाए ऊच पार गोचर थाना मैल गुरु देखाई जियो गैर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस हृदय बसेरा तिगुर बंधन तिनके सगले काटे जा नानक सह समाई जियो माज महला पंजमा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठ सोभत जागत हर त्याई सगल वरदा जियो नाम औखत मौका साधु दिया निर्मल किल काटे निर्मल थिया अन्न पै निकसी सब पीरा सगल बनासे दरदा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पिछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुर भेट थो गई बुलाए साह सा सर गावै नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो माज महला पंजमा पोत पोत सेवक संगराता प्रभु पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक ठाकुर ही काया हर जियो काट सिंह प्रभ सेवा लाया हुकुम साहब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहेब भावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब जाना ठाकुर के सेवक हर रंग माना जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो अपना ठाकुर जो पैर आया बोर न लेखा पुछ बुलाया ते सेवक का नानक कुरबाणी सो गैर गंभीरा गौहर जियो माज महला पंजमा
सब कुछ घर में बाहर नाही बाहर ढोला सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सोहेला जियो चिहम चिम वरसा अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूखा हरिया समत पाई नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग जन जल समाया त्यों ज्योति संजोत मिलाया को नान भ्रम कटे कवाड़ा बोड़ ना हो ये जावला जियो माज महला पंजमा तिस कुरबाणी जिन तुम सुनिया तिन तिस बुलहारी जिन रसना बणिया वार वार जाई तिस विटो जो मन तन तो दे रा दे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाला नह निहाली तिस पुरख दयालय मन देवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभला दे जियो सेवट पागी जिन तुम जाने सब का मधे लिप्त निर्माणे साधक संग उन भौजल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण भरिया मन मेरा मान तान तज मोह ने तिनकी शरण भरिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजा नानक तिस प्रभु वादे जियो माज महला पंजमा तू पेट शाख तुरी फूली तू सुख मुआस तुली तू जल ने तू फेन बुद्ध बुदा तुझ बिने अवर न पालिया जियो तू सूत मणिये पी तू हां तू गांठी मेर सिर तू हां आद मद अंत प्रभु सोई अवर न कोई दिखा लिया जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्माण रसिया रंगराता अपने करदे व्यापे जाने आपे तू संभालिया जियो तू ठाकुर सेव खुने आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे कपोरी नदर निहालिया जियो माज महला पंजमा सबल सो बाणी जित नाम बखाणी गुर प्रसाद कने विरले जानी धन सो विला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र प्रवाण जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हम बालतन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माए उधारे किल विकाट हुआ मन निर्मल मिट गए आपने जाना जियो दोय कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक प्रभु कै कृपाला प्रभु नानक मन भाणा जियो माज महला पंजमा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हुआ परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख पाए दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बुखाना जल थर नीर भरे सर सो भर बिरथा कोई न जाए जियो दया धारी तन सिरजन हारे जी जन सगले प्रतपारे मेहरबान कृपाल दयाला सगले तृप्त गाहे जियो वन तिन त्रिपण की तुन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसा राधा मन की गुरमुख नानक तिसा राधे मन की आस बुझाए जियो माज महला पंजमा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बांधव तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सवनी थाई ता पो के है कड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद बिछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ में दूजा एवना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो जी जन सब तुद पाए जी जित भाणा ते तितलाए सब कुछ कीता तेरा हुआ ना ही किछ साड़ा जियो नाम त्याए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपुरा वजी वधाई नानक जिता विखाड़ा जियो माज महला पंजमा जी प्राण पर मन धारा पद जीवा गुण गाए पारा गुण निदान अमृत हर नाम हर त्याई त्याई सुख पाया जियो मनशा धार जो घर ते आवा साध संग जन मरम नटावा आस मनोरथ पूर्ण होवा भेट गुर दर्शाया जियो अगम गोचर किश्मित नहीं जानी साध कसे त्यावे ज्ञानी खुद ही मिटी चूका भोलावा गुरु मन ही मैं प्रगटाया जियो अंत मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम बखाना हो कृपाल स्वामी अपना नाम नानक घर मैं आया जियो माज महला पंजमा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तुम प्रीतम ठाकुर यत पारी तुमरे करतव तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवा कथा सुन तुम्हारा सगली खोवा भेट संग साध संतन का सदा जपोंदा अल्लाह जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए प्रकाश सर्व माया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चल तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पै निहाला जियो माज महला पंजमा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन सब मिल नाम जपेहा शीतल शांत सह सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो सब कुछ बहुत बहुत पाया कर कृपा प्रभु सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जन सत्र आपे जियो सच्चा साहिब सच्ची नाही गुर प्रसाद सदा त्याई जन्म मर पै काटे मोहा बिन से सोग संतापे जियो साह सास नानक साला आहे सिमरत नाम काटे सब आए पूर्ण आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजमा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावा गुण अगम पारे गावत सुन सबे ही मुक्ते सो त्याईया जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल बुख जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर साहब सो साध स्वामी रिचक सब सको दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाईया सब भव मिन सह हर हर त्याईया जिन सेवा सु पार ग्रामी कर सगले थिए जियो आए पया तेरी शरणाई ज्यों पावे त्यों लै मिलाई कर कृपा प्रभु भक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजमा भाई कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वर्षा समनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारे जियो
अपने जी जंत प्रत पारे जम बारक माता समारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी दे सगले आहारे जियो। जल थलपूर रहा मेहरबाना सत बलहार जाइया कुरबाना रहन दिन से सदा ते आई जे खिनमें सगले उधारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोख संतापे नाम जपत मन तन हरि अवल प्रभ नानक नजर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथ नाम जपिया प्रभ प्यारे से अस्तल सोहन चौमारे जिथे नाम ना जपिया मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बार नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान भी सूखी वाड़ी जियो। संता से ती रंग न लाए साकत संग विकर्म कुमाए दुर्लभ देख होई अज्ञानी जड़पनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दे अल्लाह सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्मे साड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर कह रहे दस माने काल कलेस अब दूर पयाने शांत सुख सहज तन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटा मूले हर अंतर बार रहा पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जमकी फासा जियो। अमृत वर्खा अनह बाणी मंत्र ने अंतर शांस माणी तृप्त गाए रहे जन तेरे सतगुरु किया दिलासा जियो। जिसका सत स्ते फल पाया कर कृपा प्रसंग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो। माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जन सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जियो। जिसके से तिन ही प्रतपारे पार पै रखवारे सुनी बिनती ठाकुर मेरा पूर्ण हुई काली जियो। सर्व जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नद निहारा जल थल मेल सब दुराने साधु चरण पखाली जियो। मन की इच पजावन हारा सदा सदा जाई बिरहारा नानक दान किया दुख पंजे रते रंग रसाली जियो। माज महला पंजवा मन तन तेरा धन पी तेरा टू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो। पिंड सवराज तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई निम्न विलागा तेरी पाई कार कमावा जे तुत भावा जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख फाणा जिथे रखे बखुंड थाई तू सभना के प्रत पाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा पार मेघ बठाया जल थल मैयल दह दिस बरसाया शांत भई बुझी सब तृष्णा अंध भया सब ठाई जियो। सुखदाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप रत पाले पै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकि शरण पयागत पाई है साध साध सरनाम ते आई है तिसमिन होर ना दूजा ठाकर सब तिसा किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहब गुणी गहेरा नानक दास कहे बेनंती आठ पैर तो त्याई जियो। माज महला पंजवा सबे सुख भई प्रभ उठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लेवे अंतर सोरस होई जाना जियो। अगू गोचर साहे मेरा कटकटे अंतर वार्ता नेरा सदा लिप्त जिया का दाता कुवर लाया पछाणा जियो। प्रभ मिलना की ये निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम का पाणा जियो। हथी दीती प्रभ देवन हारा जन्म मरण रोग सब निवारे नांग दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो। माज महला पंजवा की नी दया गोपाल गोसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किए तिन करते दुख का डेरा ढाया जियो। मन तन वसया सच्चा सोई बिगड़ा थान न दिसै कोई दू दुश्मन सत सज्जन होए एको स्वामी आया जियो। जोक्ष करे सो आपे आपै बुद्ध सियाण किसी न जापे अपने संतन आप सुहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो आठ पै राम नाम अपारो सहज आनंद सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा सो सच मंदिर जित सच ते आया सो हृदय सो इला जित हर गुण गाई सत हर तुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबाणी कुरबाणो जियो। सच बढ़ाई की न पाई कुदरत करमा कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो। सच सलाण वड़ा भागी पाईया गुर प्रसादी हर गुण गाई रंग रते तेरा तुत भावै सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंतर जाना कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक सच त्याई सदी अंतर जामी जाणो जियो। माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कढ़ी मूर्त सिमृत पल वंजा जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दो समलाते अंतर बार हर प्रसादे पैपो भरम खोया गुर पूरा देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समर्थ मंड उचो पारा नौ नाम भरे पंडारा याद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाजक जाचा साधर वाला दे दान नानक जन्म मंगा सदा सदा हर त्याई जियो। माज महला पंजवा इथे तू हाँ आगा आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुझ मैंने वरना कोई करते मैं धरे उठ तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभंतर जामी जिन सेवा तिनी सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखत जिन जंतर पाया जन्म जन्म का रोग मिटाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल आय कारी जियो। दृष्ट अर्पणा दास वारिया कटकट यंत्र पार ब्रह्म नमस्कारिया एक स्वेण होर दूजा नाई बाबा नानक मत सारी जियो। माज महला पंजवा
मंत्र रत्ता राम प्यारे सर्व दीजा अपना वारे आठ पैर गोविंद गुण गाइए बिसर न कोई सासा जियो सोई साजन मीत प्यारा राम नाम सत्संग बिचारा साधु संग तरीजा सागर कटिया जमकी फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप लख भेवा काम करो किल भगव काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग भय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम बसा जिस अंतर प्रवान ग्रस्त उदासा जियो माज महला पंजवा सिमरत नाम रिदा सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया बिनसे आलस रोगा जियो जाके गृह नमने हर भाई तिस मिलिया जिस प्रभु कमाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभु सभना गल्ला जोगा जियो खिर मैं थापो थापन हर आप कंती आप सारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लैण वजोगा जियो अंच लाए समशिष्ट तराई अपना नाउ आप जपाई गुरबोध पाया कृपा ते नानक धोर संजोगा जियो माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथ रखा सा भरी जाए सो सोई सियाणा सुपतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो सब परोई एक धाग जलाए लय सो चरणी लागा ऊन कमल जिस प्रगासा तिन सर्व निरंजन डीठा जियो तेरी महिमा तू है जाना अपना आप तू आप पछाणा हम बरहारी संतन तेरे जिन काम करो लोग पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे समुत्र कलम नानक नाम त्याय तय जीवे बिछे भ्रमपो धीठा जियो माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगा तिसको मरते घड़ी न लागा पार पंजो सदी सेवा सो गुरमिल निचल कहना प्रेम भगत जिसका मन लागी गुण गावे अंध नित जागी बांह पकड़ते स्वामी मेला जिसका मस्तक लैना चरण कमल भगता मन मुठे बिण परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूण तमाचा नाम सच्चे का गहना ऊठत बैठत हर हर गाइया जे सिमरत वर निचल पाई नानक प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदिया महला पहला घर पहला ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुकुम सुहाए सची दरगाह महल बुलाए सचे दीन दयाल मेरे साहबा सचे मन पतिया बनिया हो वारी जियो वारी शब्द सुहावण अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावणिया रहाओ ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकुर ते प्रभु मेरा हों मैं कर कर जाए कणेरी करे अवगुण पछो तावणिया हुक्म पछाणा सो हर गुण बखाणा गुर का शब्द नाम निशाणा सभना कदर लेखा सचा छूट नाम सुहावणिया मन मुकूला ठौर न पाए जम दुर्बदा चोटा खाए बिन नावा को संग साथी मुक्ते नाम ते आवणे आ सागत कूड़े सच न भावै दुबदा बादा आवा जावै लिखिया लेख न मिटे कोई गुरमुख मुक्त करावणे आ यही अड़ा फिर जातो नाही झूठ विछुनी रोगा ताही अवगुण मुठी मैल न पाए अवगुण गुण बख्शावणे आ यही अड़ा जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझा तत् विचारा आवण जाना ठाकुर हाए सच्चा नाम समावणे आ गुरमुख बूजा कथ कहावे सचे ठाकुर सचे ठाकुर सच उपावे नानक सच कहे बेनती सच मिला गुण गावणे माज महला तीजा घर पहला कर्म हो सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हो मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणे हो वारी जियो वारी सतगुर कह बलहारण गुरमती प्रगास हुआ जी अंधन हर गुण गावणे रहा तन मन खोजे ताना उपाए धावत राखा ठाकुर हाए गुर की बाणी अंधन गावे सहजे भगत करावणे इस काया अंदर वस्त संखा गुरु साच मिला ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनस शब्द वजावणे सच्चा साहब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई अंधन सदा रह रंग राता दर सच्चा सोझी पावणे पाप पुन की सार न जानी दूजा लागी भरम पुलाने ज्ञानी अंधा मग न जाना फिर फिर आवण जावणे गुर सेवा ते सदा सुख पाया हो मैं मेरा ठाकुर हाया गुर साखी मिटिया इंदारा बजर कपाट खिलावणे हो मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मंत्र निर्मल निर्मल नाम ते आवणे जीवन मरना सब तो ताई जिस बख्शे तिस देव डियाई नानक नाम ते आई सदा तू जमन मरण सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभु निर्मल अगम पारा बिन तकड़ी तोला संसारा गुरमुख होवै सोई पूजा गुण का गुणी समावणिया हो वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणे जो सच लागे से आंदे जागे दर सच्चा सोभा पावणे रहो आप सुना तै आपे वेखा जिसनो नदर करे सोई जन लेखा आपे लाए लय सो लागा गुरमुख सच कमावणे जिस आप भलाए सो कि हाथ पाए पूर्व लिखा सो मिटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया सी वटभागी पूरा कर मिलावणे कई अड़ा धन आंदन सुती कंत विसारी अवगुण मुती आंदन सदा फिर लादी बिन फिर नींद न पावणे कई अड़ा सुखदाता जाता हम मारगुर शब्द पछाता से स्वावी सदा फिर रावे सच शिंगार बनावणे लख चौरासी जी उपाए जिसन नदर करे तिस गुरु मिलाए कि काट सदा निर्मल दर सच्चा नाम सुहावणे लेखा मांगा तां करिंदी आ सुख नाई फिर दुआ ती आ आपे बख्श ले प्रभु सचा आपे बख्श मिलावणे आप करे तै आप कराए पूरे गुरु का शब्द मिलाए नानक नाम मिले वड्याई आपे मेल मिलावणे माज महला तीजा इको आप फिर प्रसन्ना गुरमुख वेखा ताए मन भिन्ना तृष्णा ताए सह सुख पाया इको मन वसावणे।

आठ पहर ते आई रमैया रेन साध जन पावो गुरमिल अपना खसम त्यावो रहाओ जिन कीता मूड ते भक्ता जिन कीता बेसुरत ते सोता जिस प्रसाद न बह निध पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही जिन दिया निथामे को थान जिन दिया निमाने को मान जिन की नीसा पूर्ण आसा सिमरो दिन रहन सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसे किछ नाही राखन हारे को सालाही गौरी ग्वारी री महला पंजवा जिस की शन नाही पासोग उससे बाहर कछु ना होग तजी स्यानप बल बुद्ध विकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग कर बहर तेरे साध संग राव तिस की टेक मने मह राख गुर का शाद अमित रस चाख आवे जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज क्या मानु कहो क्या जोर झूठा माया का सब सोर कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचा इह गुरु उपदेश मने मैं लेहो जाको राम नाम लिव लागी कह नानक सो तन बड पागी गौरी गुआरी महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल महापुनीत पे सब सैल बड़े पाग पाया सा संग पाप ब्रह्म स्यों लागो रंग हर हर नाम जपत जन तार्यो अगन सागर गुर पार उतार्यो रहाओ कर कीर्तन मन शीतल पये जन्म जन्म के किलवे गए सर्व निदान पेखे मन माहे अब ढूंढन काहे को जाहे प्रभ आपने जप हे दयाल पूर्णो ही सेवकाल बंधन काट के अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूरन पूर हो सब जाए गुरपुरे सब भरम चुकाया असीमत नानक सुख पाया गौरी ग्वारेरी महला पंजवा अगले मुए से पाछे परे जो जो उबरे से बांध लक खरे जय तंदे में ओ लपटाए उनते दुगुण दिड़ी उन माए ओ बेला किछ चीत न आवे बिन सजाए ताहू लपटावे रहाओ आसा बंदी मूरख दे काम क्रोध लपट्यो असने सिर उपो ठांडो धर्म राहे मिठी कर कर बिख्या खाए हाँ बंदो हो साधो बैर हमरी भूम कौन काले पैर हाँ पंडित हो चतुर सियाणा करने हार न बुझे बिगाना अपनी गत मित आपे जाने क्या को कहे क्या आख बखाने जित जित लावे तित तित लगना अपना पला सब काहू मंगना सब किछ तेरा तू करने हार अंत नाही किछ पारा वार दास अपने को दी जयदान कबू न बिसे नानक नाम गौरी ग्वारे री महला पंजवा अनक जत नहीं होत छुटारा बहुत स्यान आगल पहारा हर की सेवा निर्मल हेत रब की दरगा सोवा सेत मन मेरे गोह हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चोला रहाओ ज्यों बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूरन होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर की पाजिस आप दिवावे हर नाम जाके हृदय बसे दुख दर्द तह नानक नसे गौरी ग्वारेरी महला पंजमा बहुत दर्ब कर मन ना अगाना अनेक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलतर उर्जो जान मेरी ओए बिन से ओए पस में टेरी बिन हर पजन देखो बिलाते त्रिग तन माया संग राते रहाओ जो बेगारी के सिर दीजे दाम ओए खसमे के ग्रह उन दुख सहाम जो सुपने होए बैसत राजा नेत्र पसारे तन निरार थका जा जो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए उस खेत का न राखा कड़े जिसके पाले कछु ना पड़े जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा आप बिना है आप करे रास नानक प्रभ आगे अरदास गौरी ग्वारेरी महला पंजवा बहु रंग माया बहु बिद पेखी कलम कागद स्यान पलेखी महर मलूक होए देख्या खान ताते नाही मन तिप्तान सो सुख मोको संत बतावो तिश्राम बूझे मन तिप्तावो रहाओ अस पवन हस्त असवारी चुआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटिक आखारे गाया ताह मैं मन संतोख ना पाया तख्त सभा मंडल दुलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे आखेड़ बिरत राजन की लीला माना सुहेला पर पांच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख ए आनंद लहया सा संग हर कीर्तन गाये कह नानक बड़ भागी पाईए जाके हर तन सोई सुहेला प्रके पाते साध संग मेला रहाओ दूजा गौरी ग्वारेरी महला पंजवा।

ਰਾਣੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤਨ ਬੇਰਾ ਬਹਰ ਬਹਰ ਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ਹੋ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ਕਵਨ ਸੁਬਿਧ ਜਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਵਨ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਤਰੇ ਇਹ ਮਾਇ ਰਹਾਉ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਣੇ ਸਾਚ ਕਹੇ ਸੋ ਬਿਖੇ ਸਮਾਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਅਰ ਹਾਰ ਇਹ ਬਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹਲਾ ਹਲ ਸੋ ਪੀਵੇ ਬੋਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਕਰ ਕੋਰਾ ਸਾ ਸੰਕੇ ਨਾਹੀ ਨੇਰ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਭਰਮਤਾ ਫੇਰ ਏਕੇ ਜਲ ਫਾਏ ਪੰਖੀ ਰਸ ਰਸ ਭੋ ਕਰੇ ਬੋਰੰਗੀ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰਪੁਰੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਾਂ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤੋ ਮਲਾਵੋ ਤੋ ਲਾਗੈ ਸੇਵ ਹਮ ਤੇ ਕੁਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਵ ਰਹਾਉ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਧਰਮਾ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਾਵੋ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਮਨ ਰਾਤਾ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜਾਤਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਜੇ ਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਕ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਥੇ ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪਿਓ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਹੇ ਜਿਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਹੋ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਓ ਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਕਤੂੰ ਜਾਈਏ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਆਹ ਪਹਿ ਜੇ ਵੇ ਆਰਾਦ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਆਗਾਦ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੇਡੇ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁੜ ਨਾ ਛੋਡੇ ਆਨ ਨਾ ਰਸਕਸ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਈ ਕੌ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਵਾਰ ਇਸੀ ਮਦੇ ਬਸ ਅਪਾਰ ਇਸੀ ਪੀਤਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸ਼ਾਹ ਕਵਨ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਉਹਾਂ ਬਿਸਾਹੋ ਨਾਮ ਕਨਕੋ ਕੋ ਬਿਹਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ ਕਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਪੀਜੈ ਪਾਏ ਲਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸੁਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧ ਪਾਵੈ ਕਵਨ ਸੁਬਿਧ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੂੰ ਬਡ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾ ਰੇ ਕਵਨ ਸੁਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਮੋਲ ਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਹਿ ਬੇ ਸਾਹ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਆਰੇਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਰਹੇ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕਿਉ ਉਨ ਬਰਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵਨ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ਏਕ ਨਿਹਾਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਏਕੋ ਬਣਜ ਏਕੋ ਬਿਹਾਰੀ ਅਵ ਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਰ ਕਸੁਕ ਦਹੂ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੋਗ ਅਰਜੁਗਤੇ ਦੀਸੇ ਸਾਮੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤਰਤੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਣੋ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਧੂੜ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸੰਗੀਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਤੁਝ ਵੀ ਨਿਮਕ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਰਹਾਓ ਜਿਉਂ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸੋਈ ਮੋਹੇ ਕਰਨਾ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਬਸਣਾ ਨਿਰਪੁਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇਰਾ ਰਸਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਨਿਧ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰ ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨੇ ਅਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਚੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਿੜਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕੈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਆਪਤ ਹਰ ਕ ਸੋਗ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਗ ਅਵਤਾਰ ਵਿਆਪਤ ਹਨ ਤਨ ਪੇਖ ਸੋਭਾ ਮੂਲ ਵਿਆਦੀ ਵਿਆਪਸ ਲੋਭਾ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਜਿਵੇ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਮਾਰੀ ਰਹਾਉ ਵਿਆਪਤ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਕਾ ਮਾਤਾ ਵਿਆਪਤ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਵਿਆਪਤ ਹਸ ਘੋੜੇ ਅਰਬਸਤਾ ਵਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ਵਿਆਪਤ ਭੂਮ ਰੰਗ ਅਰ ਰੰਗਾ ਵਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਸੰਗਾ ਵਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ਵਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਫਾਸਾ ਵਿਆਪਤ ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤ ਸਭ ਕਿਛ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰ ਰਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਮਾਏ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੂਰ ਸੰਤ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੇ ਨਿਕਣ ਆਵੇ ਮਾਈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
नैनो नींद पर दिष्ट विकार सरवण सोए सुन नींद विचार रसना सोई लो मीठे साध मन सोया माया बिस्माद इस ग्रह में कोई जागत रह सावत बस ओ अपनी लहम रहाओ सगल सहेली अपने रस माती ग्रह अपनी की खब न जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठग हारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई दर्ब सियाणप न रहते साध संग दुष्ट बस होते कर कृपा मोहे सारंग पान संतन तूर सर्व निधान साबत पूंजी सतगुर संग नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग सो जागे जिस प्रभ कृपाल ए पूंजी साब तन माल रहाओ दूजा गौरी ग्वारेरी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब किच होए उस इससे बाहर नाही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे देह निवाहे रहा सब ते ऊजा का दरबार सगल पतजा का नाम आधार सर्व व्यापक पूर्ण तनि जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमत दुख डेरा टह जिस सिमत जम कछु ना कहे जिस सिमत होत सुके हरे जिस सिमत बूढ़त पाहन तरे संत सभा को सदा जयकार हर नाम जन प्राण आधार कह नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोह को नाम निवास गौरी ग्वारेरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगर निवारी सतगुर पेटत हम मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच में रात शीतल शांत गुर ते प्रभ जाते रहाम संत प्रसाद जपे हर नाम संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेन मजन सत धर्म साध कृपाल दयाल गोबिंद साधा में ए हमरी जिंद कृपा निद कृपाल त्यावो साध संगता साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण को प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौरी ग्वारेरी महला पंजवा साध संग जो पियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत तज अभिमान पे निर्वैर आठ पहर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जस गानी रहाओ सहज सुख आनंद निदान रखन हर रख लेह निदान दुख दद बिनसे पह परम आवन जान रखे कर कर्म पेखे बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद पयो परगास पूर है एक है गुणतास कहत पवित्र सुन तपोनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कह नानक जाको हो कृपाल तिजन की सा पूरन कहाल गौरी ग्वारेरी महला पंजवा बंधन तोड़ बुलावे राम मन में लागे साच ध्यान मिटे कले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कहिए सो सुख दाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सब निदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पार ब्रह्म पछाना जन ऊपर प्रभ है दयाल जन की टेक हेक गोपाल एका लेब एको मन पहो सब निदान जन के हर नाम पार ब्रह्म सिंह लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरे मिटे अंधियारा नानक का प्रभ पर पार गौरी ग्वारेरी महला पंजा जिस मन बसे तरे जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पहना ब्यापे अमृत नाम हृदय हर जापे भार ब्रह्म परमेश्वर ते आइए गुरपुरे ते हिम्मत पाइए रहाओ करन करावन हा दयाल जी जन सगरे प्रतपाल अगम गोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुर मंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु की पूजा पाइए मान जाकी टहल न बिरथी जाहे सदा सदा हर के गुण गाय कर कृपा प्रभ अंतर जामे सुख निदान अलख स्वामी जी जन तेरी शरण आई नानक ना मिले बड़े आई गौरी ग्वारेरी महला पंजवा जी जो जा के है हाथ सो सिमरो अनाथ को नाथ प्राप चित आए सब सुख जाए पैसा बिन से हर के नाए बिन हर पौ काहे का माने हर बिसर काहे सुख जाने रहाओ जिन तारे बहुत अन अगास जाकी जोत जी परगास जाकी बख्श न मिटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपो होए आठ पह सिमरो प्रभ नाम अनेक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की शनि पाहे कोट कलंक खिन मह मिट जाहे
बेहमो ताज पूरा पातशाह प्रभ सेवक साचा बेसाह गुर पूरे राखे देहात नानक पा ब्रह्म समराथ गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा गुर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रबाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमत कुशल सपाए कर बह सुख सहज सवाए रहा सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बहा पकली नो कर अपना हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखत पुने चार हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुत तरे साध कै सांग सुख बैसो संत सजन परवार हतन खटेओ जा का नाहीं सुमार जिसे प्राप्त जिस गुर दे नानक बिरथा कोय नाहे गौड़ी ग्वारेरी महला ग्वारेरी महला पंजवा हस पुनीत होहे तत्काल बिनस जाहे माया जंजाल रसना रमो राम गुण नीत सुख पावो मेरे भाई मीत लिख लेखन कागद मसबाणी राम नाम हर अमृत बाणी रहा ए काज तेरे जाहे विकार सिमत राम नाही जमार धर्म राय के दूत न जो है माया मगन कछु है मुह उदरे आतरे संसार राम नाम जप एक ओंकार आप कमा अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहु निधान सोई पुरख जपे भगवान आठ पैर हर हर गुण गाओ कौन नानक हो तिस बल जाओ ना गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा चौ पदे दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना कहो गुसाई मिलिए कहे जो विवर्जित तिस स्यों नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे न राती बावे मार्ग टेढ़ा बसलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहा सिरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा कल युग में मिल आए संजोग जिचर आ गया तिचर भोगे भोग दिल न पाइये राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहा देखा देखी मन हट जल जाइए प्रह संग न पावे बहु जोन पवाइये सील संजम प्रह आज्ञा माने तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वारेरी महला पंजा हम तनवंत भागत सच नाए हर गुण गावे सहज सुवाए रहाओ पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निधाना रतन लाल जा का कछु ना मोल परे भंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है द्वार मिल पाई तोट ना आवे भदो जाई कौन नान जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने ले आर लाए गौड़ी महला पंजमा डर मारते जब जानिए दूर डर चुका देखिया भरपूर सतगुरु अपने को बलिहार छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चन गही जय कहो नान गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजमा जा का मीर साजन है समिया तिजन को कहो काकी कमिया जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी दुख दर्द प्रमता का भागी रहाओ जाको रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाका कहया दरगा चले से सो किस को नदर ले आवे तले जाका सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहां ब्यापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहा जाके अचिंत बसे मन आए ताको चिंता कतु नाहे जाके बिन स्व मनते परमा ताते कछु नहीं नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरनामा कौ नानक ताके सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगन रूप जाका मन में थाना गुर प्रसाद किने बिर ले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसले पुंचा रहाओ अनहत बाणी थान निराला ताकि तुन मुहे गोपाला तै सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुर नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा आराधो कवन जोग काया लै साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म रिजावो रहाओ
कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बिद जित पव जल तरो, कवन तप जित पिया होए, कवन सो नाम होमे मल खोए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहाल, जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिसी गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुख दाता रहाउ दूजा। गौड़ी महला पंजवा। आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं ताको लपटायो, आपन नाम सतगुर दे पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, मिष्ट मीत आ बाप ना माई, सोय ना रूपा फू नहीं दाम, हैवर गैवर आपन ही गाम, कौन नानक जो गुर बख्श मिलाया, तिसका सब किश जिसका हर राया। गौड़ी महला पंजवा। गुर के चन ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, सतगुर अपने को कुर्बानी, आत्म चिन परम रंग मानी रहा, चन रेन गुर की मुख लागी, अहंग बोध तिन सगल त्यागी, गुर का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताके मुहि डीठा, गुर सुखदाता गुर करतार, जी प्राण नानक गुर आधार। गौड़ी महला पंजवा। रे मन मेरे तू ताको आहे, जाके ऊना कछु नाहे, हर सा प्रीतम कर मन मीत, प्राण अदा राखो सद चीत रहा, रे मन मेरे तो तू ताको सेव, आद पुरख परम पर देव, तिस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगा जाका परवासा, जाका पी सदा सुख होए, नानक गावे गुर मिल सोए। गौड़ी महला पंजवा। मीत करे सोई हम माना, मीत के कर्तव कुशल समाना, एक टेक मेरे मन चीत, जिस किश करना सो हमरा मीत रहाओ, मीत हमारा बेपरवाह, गुर की पाते मोहे असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी, समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महात नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जाको तुम पहे समर्थ अंगा, ताको किछ नाही कलंगा, माधो जाको है आस तुम्हारी, ताको किछ नाही संसारी रहा, जाके हृदय ठाकुर होए, ताको सहसा नाही कोए, जाको तुम दीनी प्रभ तीर, ताके निकना आवे पीर, कह नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलाभ देह पाई बड़पागी, नाम न जपे ते आत्म काती, मार ना जाही जिना बिसत राम, नाम बिहुर जीवन कौन काम रहाओ, खात पीत खेलत हस विस्तार, कवन मृत कवन अर्थ मृतक शिंगार, जो न सुन है जस परमानंदा, पस पंखी तिरत जोन ते मंदा, कह नानक गुर मंत्र दिड़ाया, केवल नाम रिद माहे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तहारीक झूठे सब साक, काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुकुम तू आया रहाओ, एका माटी एका जोत, एको पवन कहाँ कौन रोत, मेरा मेरा कर बिल्लाही, मन हार ए जीरा नाही, कौ नान गुर खुले कपाट, मुक्त वे बिन से भ्रमत हाट। गौड़ी महला पंजवा। बड़े बड़े जोधी सै लोग, तिनको ब्यापे चिंता रोग, कौन बड़ा माया बड़े आई, सो बड़ा जिन राम ले बलाई रहाओ, ऊमिया पूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चले तिश्ना नहीं बुझै, कह नानक ए तत विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा। पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किछ पूरा हृदय नाम, पूरी रही जा पूरे राखी, पार ब्रह्म की शन जनता की रहाओ, पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राज जोग, हर के मार्ग पतित पुनीत, पूरी शोभा पूरा लौकिक, कर्ण हर सद बसे हदूरा, कह नानक मेरा सत गुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अकोट, संत प्रसाद जन मन ते छोट, संत का दस पावन पुन इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत के साम मिटे अहंकार, दिश आवे सब एक अहंकार, संत सुप्रसन्न आए बस पंचा, अमृत नाम लिदे लै संचा, कह नानक जाका पूरा कर्म, तिस पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजमा। हर गुण जपत कमल पर गासे, असीमत रास नासे, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे राम, सा संग पाइये निद नामा, सा संग पूर्ण सब कामा, हर की पगजन परवान, गुर की पाते नाम बखान, कौ नानक सो जन परवान, जाके हृदय बसे भगवान। गौड़ी महला पंजवा।
एक सिंह जाका मन राता बिसरे तिसे पराई ताता बिन गोविंद ना दिसे कोई कर्ण करावन करता सोई रहाओ मन एक मावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जाके हर तन सो सच शाह गुर पूरे कर दिनो बिसाह जीवन पुरख मिलया हराया कौन नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम पद के प्राण आधार नामो तन नामो व्यवहार नाम बढ़ाई जन शोभा पाए कर के पा जिस आप दिवाए रहाओ नाम पद के सुख स्थान नाम रथ भगत परवान हर का नाम जन को तहरे सास साच जन नाम सुमारे हर का नाम जन को तहरे सास साच जन नाम सुमारे कोह नाम जिस पूरा पहाग नाम संगता का मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम ते आया ताते तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हती बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करन हर नानक मन वसिया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमन की बरिया सिमरत नाम पह पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का दर्शन पेख प्रभु अविनाशी मन में लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन मन की त्रास मिटाए चरण कमल ठाकुर उतार दुर्लभ दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा तारे सो जन रसना नाम उचारे हर सिम बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमत नाम परम पौ पागे रहा हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिजन दुख निकल नहीं आवे हर की टहल करत जन सोहे ताको माया अगन ना पोहे मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजहाल गौड़ी महला पंजवा छाड़ सियान बहु चतराई गुरपुरे की टेक टेकाए दुख बिसे सुख हर गुण गाए गुरपुरा भेटिया लिव लाए रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे बिसूरे उतरी चिंत अनद भय गुर मिलत कृपाल कर कृपा काटे जमजाल कोह नान गुरपुरा पाया ताते बहु न व्यापे माया गौड़ी महला पंजवा राख लिया गुरपुरे आप मानवो को लागो संताप गुरु गुरु जब मीत हमारे मुख उजल हो वह दरबारे रहा गुर के चन हृदय बसाए दुख दुश्मन तेरी हते बलाए गुर का शा तेरे संग सहाई दयाल पे सगले जी भाई गुर पूरे जब कृपा करी पनत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजवा अनक रसा खाए जैसे ढोर मोकी जेवरी बाध्यो चोर मृतक दे साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुखी न रहा अनेक बस्तर सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेपल मानुक जपे नहीं नाम कौ नानक जाको भय दयाला साध संग मिल भजे गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेस गुर शब्द निवारे आवन जान हे सुख सारे पै बिन से निरपोहत आया साध संग हर के गुण गाया रहा चरणक वरिद अंतर तारे अगन सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरा गुर काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कौन अंतिस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा सा संगता की सनी परो मतन अपना आगे तरो अमृत ना पीबो मेरे भाई सिमर सिमर सब तप्त बुझाई रहाओ तज अमा जन मन निवारो हर के दास के चन नमस्कारो सास सास प्रभ मन है समाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मस्तक भाग कौ नानक ताकी चरनी लाग गौड़ी महला पंजवा सुखे हरे किए खिन माहे अमृत दिश संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आसा करी दया सत गुर गुंतासा दुख नाटे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए एच पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवा त
ताप गए प्रपाई शांत, शीतल भय किनी प्रवदात, प्रभ कृपा ते भय सुहेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिनसिया थाओ, सहज सुभाय बोले हर बाणी, आठ भय प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम नीर न आवे, कौन नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, भले दिन भले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग, ओ वेला को हो बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ, सफल मूल सफल ओ करी, जित रसना उचरे हर हरी, सफल ओ माथा संत नमस्कारस, चरण पुनीत चले है ते मार्ग, वाहिगुरु जी चरण पुनीत चले हर मार्ग, कह नान भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। बड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अन कोए, मारे राखे एको सोए रहा, गुर के चरण हृदय और तहार, अगन सागर जप उतरे पार, गुरु मृत से लाए त्यान, इहां उहां पावे मान, सगल त्याग गुरु शरणी आया, मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमर दुख सब जाए, नाम तन बसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी, रहाओ एकस बिन दू नाही दूजा को, जाकी देश सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन महलेख, रव रहा सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अदारा, पौ ना ब्यापे तेरी शाना, जो तत भावे सोई कर ना रहा, सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रपाणा, अगन सागर महा ब्यापे माया, से शीतल जिन सतगुर पाया, राख लहे प्रव आखन हारा, कौ नानक क्या जंत बिचारा। गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए ना, तुमरी कृपा ते दरगा था, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए, रहाओ तुम मन बसे तो दुख ना लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ पागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कान बिना जैसे थोथर तुखा, ना भी हून सुने से मुखा, हर हर नाम जो पुनित प्राणी, ना भी हून त्रिग देह बिगानी, रहाओ ना बिना नाही मुख भाग, पर तभी हून कहाँ सुहाग, ना विसार लगे अन सुए, ताकि आस ना पूजे काए, कर कृपा प्रभ अपनी दात, नानक नाम जपे दिन रात। गौड़ी महला पंजवा, तू समरा तू है मेरा स्वामी, सब किच तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पून जन ओट, तेरी शन उदरे जन कोट, रहाओ जीते जीते ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख नेरे, जो किच बाते सब तेरा पहना, हुकुम बुझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रवदान, नानक सिमरे नाम निदान। गौड़ी महला पंजवा, ताका दस बड़ पाइये बड़ भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर बसिया मन माही, ताको दुख सुपने पीना ही रहाओ, सरदा राखे जन माहे, ताके संग किलवेख दुख जाहे, जन की महिमा कथी ना जाए, जन की महिमा कथी ना जाए, पार ब्रह्म जन रिहा समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सुनी जय, दास की तू नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा, हा समृत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसे मनाए, पज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कह आवे काम, रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपुरे का निर्मल मनता, छोड़ पाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिकम सागर दे जन तरे, नानक जा को नदर करे। गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रवत हारे, पूरे सतगुण मिन सारे, गोविंद गुण गावो मेरे भाई, मेरे साधु हर नाम ते आई, रहाओ दुर्लभ दे होई परवान, सतगुरु ते पाया नाम निशान, हर सिमत पूर्ण पद पाया, साध संग पह पर मिटाया, जत कत देखो तत रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए। गौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जम जीवा सतगुरु नाओ,
पार ब्रह्म पुन गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ चरण कम हृदय उर तारी मंत्र तन गुरु प्राण अधारी सफल जन्म होवे परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान संत धूल पाइये बडभागी नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा करे दोह कर्म दिखावे होर राम की दरगा बादा चोर राम वे सोई रामाना जल थल मेहर एक समाना रहाओ अंतर बेख मुख अमृत सुनावे जमपुर बादा चोटा खावे अनक पड़दे में कमावे बिकार खिन में प्रगट होहे संसार अंतर साच नाम सच राता नानक तिस कृपाल विधाता। गौड़ी महला पंजवा राम रंगत उतर न जाए गुरपुरा जिस देह बुझाए हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पून पुरख विधाता रहाओ संते संग बैस गुण गाए ताका रंग न उतरे मा उतरे जाए बिन हर सिमर सुख नहीं पाया आन रंग फीके समाया गुर बंगे से पए निहाल फनन गुर पए है दयाल। गौड़ी महला पंजवा सिमरत स्वामी किलविकनासे सुख सहज आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग किछ पहुना पराती गुण गोपाल गाइये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोट चरण कमल की दीनी छोट कौ नान मन पही प्रतीत निर्मल जस पीवे जन नीत। गौड़ी महला पंजवा हर चनी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता का भागा तन को बापारी पूरा जिसे निवाजे सो जन सूरा रहाओ जाको भय कृपाल गुसाई से जन लागे गुर की पाई सुख सहज शांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संखाटी कह नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजमा हर सिमर सौ मिटे कलेस चन कह मन में प्रवेश उचरो राम नाम लखवारी अमृत रस पीवो प्रप्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लो मद खोए साधक संग किलविक सब तोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे साधर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए जिसको आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कमल आगे कौड़ी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोबा दास सलाम करत कत सोबा अमृत रस खावो खाव है खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कह नानक हम लून हरामी बख्श लिहो प्रभ अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चन मन महिंद ध्यान सगल तीर्थ मजन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रिद माए बसाई मन बांछ सगले फल पाई जीवन मन जन परवान जाके हृदय बसे भगवान कौ नानक से जन पूरे दिना प्राप साधु तूरे। गौड़ी महला पंजवा खादा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दू धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म पर मैं बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किच करे सगल बपरीत जियो प्राण जिन मन तन तहरिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे बिकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी शरणाए बंदन कर तरे हर नाए। गौड़ी रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुक्त पद दीत ऐसा मीत करो सब कोए जाते व्यर्था कोई न होए रहाओ अपने स्वाय हृदय लै तारिया दुख दर्द सुख सगल बिदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनेक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोबिंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा कोट विघन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहा सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कैरी दे बसे भगवान औखद मंत्र तांत सब शार कन्ने हारी दे मै तार तज सब भरम भजियो पार ब्रह्म का नानक अटल इहु धर्म। गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुसोई तित बल रोग न ब्यापे कोई राम रमन तन पै सागर शरण सूर फारे जम कागर हाव सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पुन पय काम जप तप संजम पूरी बड़ियाई गुर कृपाल हर पय सहाय
मान मोख होए गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखे राते अंधलाप हरी दुख लागे राम नाम जितारी तेरे दास को तुही बड़ियाई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त चितारे नाओ बिख माते का ठौ न ठाओ चनक मस्यो लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पै संगी बटवारे कर कृपा प्रभ ले निवारे ऐसा हर सरमो सब कोए सर्व कला पूर्ण प्रभ सोए रहा महा तपत सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारना अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमत नाम मुक्त फल पाहे उकत सियानप इससे किछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम बड़ पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहे ता पाइये रहाओ हर के चरण हृदय उतार पव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगा पाइये मान बड़ी महला पंजवा जथ मेहर पुन हर मीत ब्रह्म बिन से गाय गुण नीत उठत सोबत हर संग पहरुआ जहाँ कह सिमन जम नहीं डरुआ रहा चन कम प्रभ हृदय निवास सगल दुखा होया नास आसा मान तान तन एक साचे शाह की मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहा हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन के किल विघ्न से सा संकीर्तन फल पाया जम का मार्ग दिश न आया मन बचक्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो विख संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरण आई जिन हर राते मन तन शीतल चन हर राते वह पंजन पर मन नभ साही डरपत डरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जाके हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ आके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रव एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बाहर राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद लै नाल हर हर नाम संतन के संग मंतन राता राम के रंग रहा गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किलविक सब हिरिया सोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मत चरण कमल हृदय मह जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन ए उत्थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहा बिपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जय हर गुण गाही हर बिसरे दुख दूर कनेरे प्रभ सेवा जम लगे न नेरे सो बड़ पागी नेचर थान जय जपिए पव केवल नाम जय जाइए तह नाल मेरा स्वामी नान को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोविंद ते आवे पढ़िया अन पढ़िया परम गत पावे साधु संग सिमर गोपाल बिन आवे झूठा तन माल रहाओ रूप बंद सो चतुर सियाना जिन जन मानिया प्रभु का पहना जग में आया सो परवान कड़कड़ अपना स्वामी जान कौन नानक जाके पूरन पहाग हर चानी ता का मन लाग गौड़ी महला पंजवा हर के दास साक नहीं सांग ओ बिखे ओस राम को रंग रहाओ मन असवार जैसे तुरी शिंगारी ज्यो का पुरख पुजारे नारी बैल को नेत्रा पाए दुहावे गऊ चर सिंह पाछे पावे गाडर ले काम तिन कर पूजी सौदे को तहवे बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहे अतीर राम रसायन पीवत बीर हर के चन हृदय कर ओट जन मन ते होवे छोट रहा सो तन निर्मल जित उपजे ना पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात विकार सब ते उच एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपा नानक जाचे साध रवा गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी मेले पुन बट पागी रहा परता पेख बिकसे ज्यो नारी त्यों हर जन जीवे नाम चितारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर स्यों राता लोभी अंध करे पेख तना जन चरण कम स्यों लागो मना बिसर नहीं एक तिल दा तार नानक के प्रप्राण आधार गौड़ी महला पंजवा
राम रसायन जो जन गीदे चरण कमल प्रेम भक्ति बी दे रहाओ आनर साधि से सब शार नाम बिना ने फल संसार अंध कुकते काडे आप गुण गोविंद आचार्य प्रताप बाण त्रिन त्रिपवन पूर्ण गोपाल ब्रह्म सार जी जंग दयाल कौन नानक सा कथनी सार मान लेत जिस से जनहा गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावण राम रसार की जय चोल महाराज हर अमृत पी जय रहाओ निर्मल उदक गोविंद का नाम भजन करत पूर्ण सब काम संत संगत है गोष्ट होए कोट जन्म के किल विख खोए सिमरै साध करे आनंद मंत रव्या परमानंद जिसे प्राप्त हर चरण निदान नानक दास तिसे कुर्बान गौड़ी महला पंजवा सो किछ काजित मैल न लागे हर कीर्तन में इह मन जागे रहाओ एको सिमरना दूजा पाओ संत संग जप के वरनाओ कर्म धर्म नेम व्रत पूजा वाद ब्रह्म बिन जान न दूजा ताकि पूरन होई काल जाकी प्रीत अपने प्रभ नाल सो बैसनो है अपर अपार कौ नानक जिन तजे बिकार गौड़ी महला पंजवा जीव छाड़ जाहे देवाने मोया उनते को बरसाने सिमर गोबिंद मंतन तो लिखिया काहू काज न आवत बिख्या रहाओ बेखेठ गौरी जिन जन जिन जिन खाई ताकि तिश्ना कबू ना जाई दारन दुख दुतर संसार राम ना बिन कैसे राम ना बिन कैसे उतरस पार सा संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आरहाद गौड़ी महला पंजवा गरीबा उपर जे खिंजे दाड़ी पार ब्रह्मसा अगन में साड़ी पूरा न्याव करे करतार अपने दास को राखन हार रहाओ आद जुगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज बढ़ ताप तिन मारिया जे रखे न कोए आगे पाछे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शन नानक नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तोन आप पापी को लागा संताप जिसे सहाई गोविंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहा साची दरगा बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाए आपे बादे दर्ब गया सब जी के साथे नानक शरण परे दरबार राखी प्याज मेरा करतार गौड़ी महला पंजवा जानकी तुहूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ अहंग बुद्ध मन पूरत थाई साध तुहूर कर सुध मंजाई अनेक जलाजे तोबे देही मैल ना उतरे सुध ना ते सतगुरु भेटियो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पहकाल मुक्त बुद्ध हर नाओ प्रेम पद नान गुण गाओ गौड़ी महला पंजवा जीवन पदवी हर के दास जिन मिलिया आत्म प्रगास हर का सिमर सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार पनानी रहा आठ पैर त्याये गोपाल नानक दर्शन देख निहाल गौड़ी महला पंजवा शांत पई गुरु गोबिंद पाई ताप पाप बिन से मेरे पाई रहाओ राम नाम नित रसम बखान बिन से रोग भय कल्याण पार ब्रह्म गुण अगम विचार साधु संगम है निस्तार निर्मल गुण गाव नित नीत गई ब्याद उबरे जनमीत मन बच क्रम प्रभ अपना तिहाई नानक दास तेरी शरनाई गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरदेव परम गए पूर्ण सेव रहाओ शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म पर कृपा तहारी नानक नाम जपे सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै गौड़ी महला पंजवा तन ओ मस्त तन तेरे नेत तन ओ भगत जिन तुम संघेत ना बिना कैसे सुख लही है अरसना राम नाम जस कही है रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान नानक जिन जपिया निर्वाण गौड़ी महला पंजवा तू है मसला तू है नाल तू है राखे सार समान ऐसा राम दीन दुनी सहाई दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ आगे आप यो धान बस जाके आर पह मन हर को जापे पत परवान सच निशान जाको आप करे फुरमान आपे दाता आप प्रतपाल नित नित नानक राम नाम समाल गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरे भया कृपाल हृदय बसिया सदा गोपाल राम रवत सद ही सुख पाया
मया करी पुन हराया राव। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्ते सुहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल बिछाए हेठ, गर्तब भांगू लाहे पेट। बिन करतूती मुक्त न पाइए, मुक्त पदार्थ नाम ते आइए रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी काढ़ लेवे हदाना। वेद पढ़े मुख मिठी बाणी, जिया को हत ना संगे प्राणी। कौ नंद कृपा तहरे, हिरदा सुध ब्रह्म विचारे। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे। बादशाह शाबस कर दीने, अमृत नाम हारस पीने। निरपो होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं छले। हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला। सब पै मिटे तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सियो सो रचे जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख ना लागे, हर संग राता अंदिन जागे। हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते ब्रह्म पौ नसे। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिन को बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उदम कत शीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए। नाम जत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम पया कुशल कर आए, पेट साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, काया संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासे पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की शरणी पए। जो चाह सोई जपाया, अब ढूंढन काहे को जाया। अस्थिर भय बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख वासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन बसियो हर को नाम, सगल पवित गुण गाए गोपाल। गुण गाए गोपाल, पा मिटे साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत उर्द तप साधन साधे, अनेक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमृत शास्त्र वेद बखाने। जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने। अगाध बोध हर अगम पारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे। नानक को प्रभ कृपा तारे। गौड़ी महला पंजमा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया। चन कल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा। इसे अराध मेरा मन तीरा रहाओ। अंदिन जपो गुरु गुरु नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलवे गए। कौन नानक कहाँ पै पाई, अपने सेवकी आप पैज रखाई। थोड़ी महला पंजमा, अपने सेवक को आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। कर्ण करावन पूर्ण सब सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, पै बिस्यातम सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किलवे खिलाथे। कह न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दा सदा शरणाई। गौड़ी चेती महला पंजवा, एकों का सतगुरु प्रसाद। राम को बल पूर्ण पाई, ताते ब्रिथना व्याप एकाई रहाओ। जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ आपात गवाई, नानक हर गुण निरपो गाई। गौड़ी महला पंजवा, पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ। सरवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ को नामे, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, वह सागर संत पार उतरिया। मेरा गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। दे गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन कही ना जीवना, त्रिग्रहणा संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी। हस अलंबन देहो प्रभ, गर्तों उदर गोपाल। मोह निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला,
कवन विधि विचार, शरण समाई दासित ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम हरस माहे, सुप्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाए, मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक पजै बिख तरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के छंत के घर, महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, है कोई राम प्यारो गावे सर्व कल्याण सुख सच पावे, रहो बन बन खोजत फिरत वैरागी, बिरले काहू ए लिव लागी, जिन हर पाया से बड़ पागी, ब्रह्मादिक सनकादित चाहे, जोगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे, ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ पागी हर संत मिलाही, जन मन तह मूले नाही, कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे, बिनो सुनो प्रभ प्रऊच पारे, नानक मांगत नाम अधारे। गौड़ी पूरी महला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, रहाओ रूप हीन बुद्ध बल हीनी, मोहे परदेस संदूर ते आई, नाहिन दर्व ना जो बनमाती, मोहे अनाथ की करो समाई, खोजत खोजत पही बैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिर तिसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, पा मिल वे को पीतम लागी, पाहे लगो महे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मुहे सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अंदिन फिरो तिस पिछे बैरागी, पूरब कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिल हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गौड़ी महला पंजवा, निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शन गोह पूरन, राम रतन हीरे संग राख, रहाओ प्रम की कुई तृष्णा रस पंकज, अति खण मोह की फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद, चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रपीतम, दीना नाथ सुनो अरदास, कर गहले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। गौड़ी महला पंजवा, हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासे चित वो दिन रानी, है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनेक पांत तिस करो निहोरा, तुला हर तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबे ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुपेटत हर नानक, जन्म कृतार्थ सफल सवेरा। रा गौड़ी पूर्वी महला पंजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मोहे मार्ग दे बताई, रहाओ अंतर अलख ना जाई, लख्या बिच पढ़दा हम मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, यो भरम कहो क्यों जाई, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई, एक बस बिन पंच दुहेले, ओ बस अगोच ठाई, जिसका ग्रह हो तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई, अनक पाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत ले बुलाई, पांच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई, मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई, सहज पिया प्रमुख इन में नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई, रहाओ दूजा। गौड़ी महला पंजवा, ऐसो पचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै, सतगुरु मुझे बतायो, रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही, मोहे एह विश्वास होए आयो, कह पे अर्द करो अरदास बेनती, जो सुन तो है रगरायो, लहो सहसा बंधन गुर तोरे, ना सदा सहज सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहां दिखायो, खांड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो, नौ नित नाम निदान एक ठाई, तो बाहर कैठे जायो, एक कनक अनेक भात भाजी, बहु प्रकार जायो, कह नानक परम गुर खोई है, एव तत्ते तत मिलायो। गौड़ी महला पंजवा, औद कटे दिन सनाना रे, मन गुर मिल काज सवारे, रहाओ करो बेनती सुनो मेरे मीता, संट हल्की वेला, इहां खाट चलो हल्ला आगे बसन सेला, यो संसार विकास सहसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए प्याए हर रस, अकाश कथा दिन जानी,
ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੋ ਬਸੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਏ, ਨਾਨਕ ਦਸ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਅਨਕ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਛੋੜ ਹੈ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤਾਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹੇ ਨਿਰਭੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਜੀਤ ਲਹਿ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਏ ਬਨਾਸੀ ਰਾਇਆ, ਨਿਰਭੋ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਾਉ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਨਿਮਾਨ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਵਕਤਾ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲ ਹੋਤਾ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਹਜ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇਤਾ, ਕਾਠ

सुहेला हुए जन्म सुहेला सब जाए मिलो सतगुर को मेरी जिंदड़ी है जो हर घर ना दृढ़ावेरा हर जग में आ खिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़ी है मत के जापे सहा आवे के मत के जापे सावे के आवे मत के जापे सावे के ना आवे लख 84 प्रांतियां दुर्लभ जन्म

तिन लिया अंचल लाए। गुरु प्यारी साध संग जी, बाणी दे कत अनुसार आप जी ने सुनिया, जैसे रहन प्रौने उठ चल से प्रभात, क्या तुरता गिरस्त स्यों सब फुलना की बागात। ये जीवन सफलता होना जे पंजा प्यारियां कोल जाके रहत समझ के नाम दृढ़ करा के संगत च बह के नाम जप के जीवन ता सफल होना। इसे प्रथाएं इस समागम विच अमृत संचार रात नू है। पंजा प्यारियां ने तुठना, पंजां प्यारियां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान होके, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होके अपना बनाउन गए। जिन्हां जिन्हां ने गुरु साहब का बनना है, गुरु साहब नूं अपना बनाउना है, आप तैयार वर तैयार होके रात नूं रकाबगंज साहब, शाम नूं 4 बजे रकाबगंज साहब जी तैयार वर तैयार होके पंजां ककारां दे धारनी बन के उत्थे पहुंच जाओ, तरले पा के ये दात लै लो जी। रात नू रैन सवाई भी है रकाबगंज साहब जी, आप जी सारे ने पहुंच के लाहे लैने।

आओ सजन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडाओ त्राहे त्राहे पर शरणी आए जल तो कृपा की जय कर गए ले हो दास अपने को

रूपहीन बुत बलखिने मोहे परदेश घूरते आए। नाहन दर्व न जोबन माती मोहे अनाथ की करो सुमाई खोजत खोज।